ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याय जिस तिठे शब्द हो जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नदयावे धाए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजाद्या चाली मुक्तिया हटिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गुरुद्वारिया की सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिखी के साथ स्वासन संग निभाई तिना की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रशिया रियायत देखते फतेह बिरद की पाए। पंथ की जी श्री

पूर्ण मूल मंत्र है। सो इस करके ये दो श्लोक ने, यह अंतिम श्लोक है इस पावन बाणी का, जिदे विच समझ लेना कि बाणी का सारा सार ही है। गुरु साहब जी ने संखेप भाव जो इहदा है दस ने दस दिता भी एक समरी है, पौन पानी अग्नि की गल की है कि साडे संजोग लई परमात्मा ने इत्थे पैदा किए ने, उन्हां विच असी पैदा होए हां, इत्थे असी कर्मां दी खेड खेडने हां, कुछ जितन वास्ते आए ने कुछ हारन वास्ते आए ने, जित हार दा नतीजा रब दी दरगाह विच धर्मराज करदा है, जिहड़े जित जांदे ने ओह कईआं नूं कर्मां दे बंधन तों मुक्त करवा दिंदे ने, ते जिहड़े हार जांदे ने ओह फिर इसे खेड विच दुबारा धकेल दित्ते जांदे ने कि दुबारा खेड के आओ, जिन्ना चिर पास नहीं हुंदे, जिन्ना चिर तुहाडे जीवन विच कामयाबी नहीं आउंदी उन्ना चिर तुहानूं इह खेड खेडणी पैणी। दूसरी वार्ता, इह श्लोक गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दतार पिता जी दे नाम हेठ भी दर्ज है। जदों असीं माझ की वार पढ़दे हां जो गुरु नानक देव जी दी है, उहदे विच इक श्लोक इस तरह आउंदा है, श्लोक महला दूजा। बिल्कुल इसे तरह यही श्लोक है, सिर्फ तीन चार अखरां दे भेद ने। जिवें असीं इत्थे पवन गुरु पाणी पिता पढ़दे हां, उत्थे पौन है ऊड़े दे नाल, पौन गुरु पाणी पिता, पहलां दा उचारण ही वेखिए, बहुत लोग इहदा उचारण गलत कर देंदे ने श्लोक दा ही, पौन गुरु जां पवन गुरु असीं इह ज्यादा पढ़दे हां, पवन गुरु पाणी पिता पीता भी कह देंदे ने, पीते दर क्योंकि पानी नाल पीते दा संबंध है ना, भी पानी पीता जांदा है, तां कई वारी उचारण विच जां अर्थां विच असीं सोचदे हां भी पानी पीते दी गल कीती जा रही, नहीं, पानी पिता इहनूं पिता करके पढ़ना है, पीता करके नहीं पढ़ना, सिहारी लगी है पानी पिता, ते उत्थे है पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत, इत्थे आपां पढ़दे हां दिवस रात दोए दाई दाया। माझ की वार विच जिहड़ा श्लोक है उत्थे फर्क की है, उत्थे दिवस दी थां ते दिन सरात है, क्योंकि बाणी विच बहुत शब्द दोहराए गए ने, ते दोहराण वेले अखरां दा भेद सतगुरु जी ने रखिया पंचम पातशाह जी ने, तां जो साडी सुरत विच चलदा रहे भी ये जिहड़ी बाणी दोहराई गई है रिपीट कीती गई है ये असीं कित्थे पढ़ रहे हां, जपजी साहिब विच पढ़ रहे हां, जिवें सोधर है असीं पढ़दे हां, उस सोधर पढ़दे हां सोधर दे अखरां विच भेद तां ही पाया कि सानू याद रहे कि असी ए सौदर वाली पौड़ी जपजी साहब विच पढ़ रहे हां, सवेरे के रह रास वेले पढ़ रहे हां, वह अखरां दी भिन्नता तो ही पता लगेगा कि असी जपजी साहब पढ़ रहे हां कि रह रास साहब पढ़ रहे हां, अर्थ सेम ने, अर्थां विच कोई फर्क नहीं, पर जिथे भी सतगुरां ने बाणी दे कोई शब्द दोहराए ने थोड़ी जी भिन्नता रखी, जिवें श्लोक पहले ही आपां आद सच जुगाद सच है भी सच पढ़दे हां, पर उही श्लोक सतगुरु पंचम पातशाह जी ने सुखमनी साहब विच ही रखिया है, ते उत्थे भेद की पा दिता है भी दी थां ते है भे सच कर दिता, नानक होसी भी दी थां ते भे सच कर दिता, भी याद रहे असी केड़ी बाणी पढ़ रहे हैं, भी सुखमनी साहब पढ़ रहे हैं, इत्थे जपजी साहब वाला श्लोक नहीं अर्थ होई। इसे तरह दिवस की थां ते उत्थे दिन सै, रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया वाचै, इत्थे दुलावां नाल है, उस श्लोक विच है वाचे ला नाल है, वाचे धर्म हदूर, बस इन्ना कु फर्क है, अगे जाके है फिर केती छुट्टी नाल, जिहड़ा शब्द श्लोक विच असी इत्थे पढ़दे हां उत्थे है होर केती छुट्टी नाल, होर नाल वधेरा लगा होया, एक तां इस तरह माझ की वार विच, दूसरा इस श्लोक दे गुरु साहब जी ने एक शब्द विच थोड़ा जा अंकित किया है, मारू सोहले दे विच गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा एक लम्मा शब्द हुंदा है, उहदे विच भी गुरु साहब दतार पिता महाराज जी इस श्लोक नूं थोड़ा इस तरह बयान करदे ने, पौन गुरु पाणी जाता, उत्थे पिता नहीं लिखिया, जाता दा अर्थ है जाणिया, समझो, उधर संजोग धरती माता, उत्तर उधर संजोगी धरती माता, जग खेलै खिलाई है, वो परमात्मा इस जगत नूं खेड बना के खड़ा रहा है, ये गुरु साहब जी ने बहुत थां ते वर्त्या, आपां अगे आरंभ करांगे समझांगे नाल नाल, गुरु कृपा करे अज इस पावन श्लोक की आपां विचार करनी है, नाल ही जपजी साहब बाणी की समाप्ति हो जानी है। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला रसना पवित्र करिए, कोई रसना वांझी ना रहे, प्यार सहित आखो जी।

की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई थे आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद रो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है घर नौ निध आवै धाए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई हुए सहाय। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे निमाणियां दे माणनी ताणियां दे ताण सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी ने मेहरामत कीती है दाता जी। अमृत वेले तो लै करके ऐ सवेरे तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दे दार बख्शे दातिया। आप जी का कोटि कोटां शुकराना धन्नवाद है जी। ऐस वेले रात्रि दे दीवानां दी समाप्ति होई है। आप जी दे सुख आसन दी सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने होईआं भुल्लां बख्श देणी। आप जी कृपा करो अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो जी। रात सुख शांति नाल बतीत करनी। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शणे। सही प्यारे मिलने जिना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

मुबारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कन्हेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र तहारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गात में तो तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी, सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न से जाई, बिन नावै पत जाए, अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै, एक पी न दे दस पी, हिर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर से नाही चारा, ताकौ की जय साध नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा, जिस जाने अपना हुक्म मनाया, सर्व तोक नानक तिन पाया, अगंत साहु अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास, अपनी अमान कश बहुर साहुले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर का विश्वास न होवै, जिसकी वस्त तिस आज्ञा रखै, प्रभु की आज्ञा मन है मत है, उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यो रंग लावे, ओ बिनसै ओ मन पशुतावे, जो दिसै सो चलन हार, लपट रहे हो तह अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावे नेहे, ताकौ हाथ न आवे केहे, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लै लाई, मिथ्या तन धन कुटंब सबाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता, मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस थिर भगत साध की सरन, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलित बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाय, गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन की नरारत दाम, धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेक न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जान चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै, आपे आप करतन बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भावै तिस लय लड़ लाए, अंत नंतर रहया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सुजाए, अहं मेव नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरदेव अष्टपदी, जिह प्रसाद शति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परम गत पावै, जिह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसे तिहाए सदा मन अंदर, जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमर हो तिस रसना, जिह प्रसाद रंग रास भोग, नानक सदा तिहाइयै तिहावन जोग, जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडावै, तिसे त्याग कत अवर लुभावै, जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहरता का जस गावी जय, जिह प्रसाद तुझ सब को मन, मुख ताकू जस रसन बखानै, जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पाथ से ती कर जावै, जिह प्रसाद आरोग कंचन देहि, लिव लावहु तिस राम स्नेहि, जिह प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत,
जिहि प्रसाद तेरे सगल शिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जिहि प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सा सा सिमरहु प्रभ ऊचे। जिहि प्रसाद पाई दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे। जिहि प्रसाद अभूखन पहरी, जय मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै। जिहि प्रसाद असव अस्त हस्त असवारी, जिहि प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी। जिहि प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत साध तिसै त्याई। तिसै त्याए जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रखै। जिहि प्रसाद कर है पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिहि प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सा सा चितारी। जिहि प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जिहि प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिहि प्रसाद तेरी पतर है, गुर प्रसाद नानक जस का है। जिहि प्रसाद सुने करण नाद, जिहि प्रसाद पेख है बिस्माद। जिहि प्रसाद बोले अमृत रसना, जिहि प्रसाद सुख सहजे बसना। जिहि प्रसाद हस्त कर चल है, जिहि प्रसाद संपूर्ण फल है। जिहि प्रसाद परम गत पावे, जिहि प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहु, गुरु प्रसाद नानक मन जागहु। जिहि प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ कौ मूल ना मनहु बिसार। जिहि प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप। जिहि प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिस है जान मन सदा हजूरे। जिहि प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू तासिउ राच। जिहि प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सुनाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लाव हो, तित लग है हर नाथ। नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक आगम आगाद पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब हूतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा फर फुलै। जिह साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूँ तावै, साध संग आस थेत मन पावै। साध कै संग माया ते भिन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचरला है, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिशुरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਾਰਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਆਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਭਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਕੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਾਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਮਨ ਆਪਣੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਪਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸੁਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਏ ਅਧਿਆਖਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿੱਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ਸਲੋਕ ਉਰਤਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ਪਰ ਤ੍ਰਿਐ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ ਸਾਧਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕੂਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨੇਹ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਛਾਨੀ ਬਾਛੈ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ
मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मालक होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्मै सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सुखम मैं जानै असथूल। चहु वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उर तारै, पाश परेत मुगद पाथर को तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म। जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं बियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो व्रताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जेत जेत घर राखै तैसा तिन नाओ। आपे करण करावण जियोग, प्रभ भावै सोई फुन होग। पसरेओ आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पए निहाल। सलोक उस तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहु विद अनेक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है। कई कोट नव तन नाम त्या वह, नानक करते का अंत न पाव है। कई कोट पए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभेग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब को हिरै, कई कोट पर दुख न करै। कई कोट माया शरमाहे, कई कोट परदेस परमाहे। जित जित लावहो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल। कई कोट ससियर सूर नखयत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र। सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस ने सतारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवरण थीवे। कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहुजूनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै थक पाहे।
कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे। कई कोट भये बै रागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मै पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मंगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिन कौ हुए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो बिसथार। कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते हुए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तात के बेते सदा निहारै, एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पय साध साध ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन को सा सा सुमारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारण, जल सल महियल सोए अष्टपदी। करण करावण करने जोग, जो तिस भावै सोई होग, खिन मैं थाप उथाप नहारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे धार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावै मनुख गत पावै, प्रभ पावै तां पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास ते राखै, प्रभ पावै तां हर गुण भाखै। प्रभ पावै तां पतत उधारै, आप करै आपन बीचारै, दोहां सिरिया का आप सुवामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै। कहो मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे। अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत अपन आप बचै, भरमै भूलै दै दिस धावै, निमक माहे चार कुंट फिरे आवै। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, किन मैं नीच कीट पौ राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जा का दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल दैदिस प्रगटावै, जा को अपने करे बखसीस, ताका लेखा न गने जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, खट खट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, करण करावण सर्व कुनाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो। कबहू ऊच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर करंग हसै, कबहू नेंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊप काश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावण हार। कबहू नृत करे बहु भांत, कबहू सोए रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बहै बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत मैं आवै, कबहू भला भला कहावै। ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावै ध्यान, कबहू ताट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, ज्यों तिस भावै सोई होए, नानक दूजा आवर ना कोए। कबहू साध संगत एहो पावै, उस अस्थान ते बहुर ना आवै, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मैं जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सतगुरु बान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो वनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन परमावै।
धन भूमिका जो करै गुमान सो मूरख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान कश संग न जावै बहु लस्कर मान हो ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै हों तहारे श्रम पावै सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै सर्ब की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जानै मुझते काश होए तब इस को सुख नाही कोए जब ए जानै मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तहारै को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै सहस खटे लख को उठतावै तृपत न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या के करै नह तृपत आवै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो के शकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बुझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक साध ही रिया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन बिसथार सब कछु उसका उकरने हार उसते भिन्न कहो किश होए थान तनंतर एकै सोए आपने चालित आप करने हार कौ तक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिर लै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पीगत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत भावै ता उस कापी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महाअहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुख ते टरै
संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै तां लए मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै। संत के दुखी को ध्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृत के लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी को आवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लए उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत। किरत निंदक का धुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत कह दुख न त्रष्टै कोए, जैसा भावै तैसा कोई होए। पया किरत न मेठै कोए, नानक जन सच्चा सोए। सब घट तिस क्यो करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, किसे त्या बव सास किरास। सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बडभागी नानक जन से सलोक। तजहो सियानप सुर जनाओ, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम हो जाए। अष्टपदी मानुख की टेक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लग आए। मारे रख है एक आप, मानुख कह किश नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। चरण चलाओ मार्ग गोविंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। बड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गने संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछान, एत ओत कियो सोजी जान। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन है निरंजन जानया। गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। आन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी खटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूजिया। जब देखो तब सब के शमूल, नानक सो सूक्ष्म सोई असथूल। नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै। आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप। अविनाशी नाही किश खंड, धारण तार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सुसु बावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप पए निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनो कृपा करे बड भागै। नाम जपत पवै विश्राम, नानक ते
तिन पुरख कौ तुम कर मान जो किशु करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुबाए हो वैसो होए करणे हार पछाणै सोए प्रभ का किया जान मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हों बन आए आप सुखो आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन की आकशु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किश काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ जां सब किश तिसका दिया दरबै हत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बहे दातार तिस दिन हर जन गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मनय सथमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मेल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की बाशौ तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बेल लाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो काश करै सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरा संग लपट रहे रस लोपी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात से ती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लेहु मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद के बसंत है संगचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार नानक थाकै सद बलहारे चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध कहो अपना जियो साध की धूर कर हो स्नान साध उपर जाइए कुरबान साध सेवा वड भागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ऊट गही संतै दर आया सर्व सुख नानक तेहे पाया मृतक कौ जीवा लनहार भूखे कौ देवत आधार सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किश तिस कौ करने जोग किस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जने आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जा कै हृदय एको होए सच करणी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत सच दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किशो त्रेहो गुण ते प्रभ पिन तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्नो अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मान एहो अनराओ मन सा पूरन सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल साध जाकै सर्व थोक सुनिए घर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याहे त्याहे भगता है सुख पाया नानक किस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे
पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके असभान जैसा जना वै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक करै एक रंग नाना बिद कीनो बिस्थार प्रभ अबिनासी एकंकार नाना चालित करे खिन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट दिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब भवन नाम कै संग उधरे सुन श्रवन कर कृपा जिसे आपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोई नाम जापत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मेत गत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवर न बूझ करत बिचार करते की मेत न जाने किया नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया बेसमन बेसम पय बेसमाद जिन बूझिया ते साया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सुवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पी सच है पे साचो नानक हुसी पे साचो अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सबद हरि आपे गुण कारी सबद सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावण तिन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान ते समान प्रगटाया भैते निरभउ होए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे समान बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई बुझै बुजन हार बबेको नारायण मिले नानक एको ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पल नहारा सेवक ही राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभ तहारे नानक सो सेवक सा सा सुमारे अपने जन का परदा ठाकै अपने सेवक की सर पर रखै अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात रखै ताकि गत मित कोई न लखै प्रभ के सेवक काओ को न पहुँचै प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया नेकी की री मैं कल रख है भस्म करै लस्कर कूट लख है जिसका शासन कढ़ते आप ताको रखत देकर हाथ मानस जतन करत बोपांत तिसके करत बिरथे जात मारे न रख है अवर न कोए सर्व जिया का रख सोए काहे सोच कर है रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिया पी अमृत एह मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस केश अवर नाही दृष्टाया
नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम सुमने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करै भगत आत्म कै जाए प्रभ अपने सिउ रहै समाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुकुम पछानै तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पह प्रभ से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओटले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी सरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिस कै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचिरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सहै आपस को कर काश ना जिनावै हर हर नाम हृदय सद त्यावै मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए नेह कामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपने कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मातले बीस बिसवे गुर का मन मन सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सत गुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्ब निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं काश परम सहस्याण पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बाड भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगा गवे सुन कर बचन करण आघाने मन संतोख आत्म पतिया ने पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पिख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेह बाएक उस तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निरपानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने इहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमृत सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जैपे मन प्रगटे गुण दास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह रखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भारम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठाड वरताई आनंद पहया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाओ चूका निरपो होए बसे सगल व्याध मन ते कह नसे जिसका आसा तिन कृपा तहरी साध संग जप नाम मुरारी थेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियोही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर बिन रंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साध कै संग राचे रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी श्लोक
साथ न चले बिन भजन बिखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो बिचारो, एक सिमर नाम आधारो, अवर उपावो सब मीत बिसारो। चरण कमल रिद में उरत हारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ। ए तन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंट उठ थावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सूबा को करै भली करनी, सा सूबा भाज हर की सरनी। अन को पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्ब निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दर गै परवान। मन प्रभु दो हर कै नाए, दह दिस धावत आवै ठाए। ताको बिघन लागै कोए, जा कै हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सै पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो का चूकाचा। आवागवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। एव रत्न जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनको पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद बिचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू कै लपटावै मूर्ख मना। सोत मीत कुटुंब हर बनता, इन ते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्थारु, इनते कहो कवन छुटकारु। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बौडू बेस्याने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिक जाए। आप जपहो अवरा नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गत पावहो। सार पूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। शाड सयानप सगली मना, साध संग पावे सच तना। हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दरगै जयकार। सर्व निरंतर एको देखो, कहो नानक जाके मस्तक लेखो। एको जप एको साल आहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रभ व्याप। अनक बिस्थार एक ते पहे, एक आराध प्राशत गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो धूर पार, ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल सिंह लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगै नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महासुख होए, हार रस पावै फिर लाकोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिवलाग। बडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुरु ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होए दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन पहया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनी सरधा सब पूरी, रव रहया सद संग हजूरी। जिसका सतन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए।
सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै गुरप्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तत एह बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पहे तरिया संसार बिन भगती तन होसी शार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए बिसराम सगल दुख काहु वतनास नानक नाम जप हो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर

करत प्रत पाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमुख हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पहाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानक आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार एहो काश ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस खां किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जपत तब हर कुसोग कहो किसे व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब सेव सकत कहो कि त्रिठाए जब आपे आप अपनी जोत धर तब कवन निडर कवन कत डर आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहु कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त कैसे पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्बान तह कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिरदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस भूख गवन त्रिपतावै कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेब कहा को चीन जब आपन आप उर तारे तो सगन आप सगन कहा विचारे जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्म मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपने गत जानहु आप जह अशल अशेद अभेद सुमाया उहां कसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेहु गुण का नाही प्रवेश जह एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथ है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहु गुण मैं कीनो बिसथार पाप पुन तय पई कहावत कु नरक कु सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तौ नानक एक जह अवगत भगत तह आप जय पसरे पसार संत प्रताप दुहु पाप कापे तने उनकी शोभा उनहु बने आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निर्जोग जिस भावै तिसे आपन ना इलावै जिस भावै तिस खीर खिलावै बेशुमार अथा अगणत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा

सुखमनी सब ते ऊच ताकी सोबा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जाह दूर। कथना कथि न आवै तोट, काथ काथ कथि कोटि कोट कोट। देदा देलै देथक पाहि, जुगा जुगंतर काहि काहि। हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे प्रवाहो। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पहु अपारु। आख है मंग है।

के बोलन बोलिए जिस तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सुचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निदान गावीए सुनिए मन रखिए पाओ दुख भर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई गुरी सर गुर गोर कबरमा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाने के नाए करी जे तिसर ठोपाई वेखा विण करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक

ऐसा नाम निरंजन हुए। जे को मन जाने मन कोए, मन ने मार्ग ठाक न पाए, मन ने पाथ्यों पर घट जाए, मन ने माग न चले पंथ, मन ने धर्म से की संबंध। ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, मन ने पावे मुख द्वार, मन ने परवार साधार, मन ने तरे तारे गुरसिख, मन ने नानक पवे न फिक। ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख था प्रक्रिया जिन सूत। जे को बुझे हुए सचियार, तबले ऊपर किता पार, धरती होर पर होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सब ना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कुए, लेखा लिखिया किता हुए। किता तान स्वालिहु रूप, केती दात जाने कौन कूत, किता पसाओ एको कुआओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारे ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। संख जप संख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, संख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोह लिवलाई थार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम कोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पकताहे, असंख निंदक सिर करह पार। नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जूत पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। संख नाव संख थाव, अगम अगम संख लो, असंख है सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी शालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संयोग वकान। जिन एह लिखे ते सिर नाहे, जिव फरमाए तिव ते पाहे, जीता कीता तिता नाओ, विण नावै नाही कोथाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिया हथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतरस के, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लिये उर धोए, भरिए मत पापा कै संग, ऊ तो पै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाही, कर करना।

मन कीता भाऊ अंतरगत तीर्थ मल नाऊ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी ब्रह्माऊ सत सुहान सदा मन चाऊ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे हुआ लिख पुराण।

सोई। किव करे आखा किवसा लाही क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुआ, नानक जी को आपाओ जाने अगे गया न सू है। पाताला पाताल लख आगा सा आगा, कूड़ कूड़ कपाल थके वीर।

जिस मनु न विसर है अंत न शिफ्टी कह नयंत अंत न करण दे नयंत अंत न वेखण सुन नयंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पार अवार अंत कारण किते बिल लाही ताके अंत न पाए जाए हो अंत न जाने कोई बहुत।

जसी जाय न जसी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करै विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत गया दया भंडारण घट घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रित सदा वरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै

पीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं।

अनेकें वरीकें भुजंग प्याचंद नमो सर्वमानी समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाते नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे श्रृंग परम रूपे नमो जुग जुगे श्रृंग परम सिद्धे नमो राज राजे श्रृंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत परे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता दूर धर दंग गंगो गहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग छेदी अपेदी अनामुंग कामुंग समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है भुजंग प्रयाचंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तुंग निरनाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साध साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अकीजे अभिजे समस्तं प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल योगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंत्व प्रसादाद रूपनाद मूरत जौनपुर कपार सर्वमान्त्र मान देव अपेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग नरेक आद पुरख उदार मूरत जौनाद शेक देश और नपेश चक रूप रेख नराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम हीन पेख ताम न जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिरेक देव भेव न जाने जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पास हो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक माने पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जे जा पा देव नाद मूर्त ताप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो सुयम पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुख परम रहता भूत लखा भेस अंग रागना रंग जाकै जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंगन आत्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन वेग सर्व शास्त्र ना जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाकर नेत भक्त नित
कोट सिमर प्राण शास्त्र नया वही वो चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश

काल अनपूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंड बाढ़ चाचरी चंद्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासी चतुर चक्र वासी चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्रय न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृश्य कृषय भगवती चंद प्रसाद कथते किया चिज देश किया भिज पिशय किया गंज कर्म किया भंज भरम किया भिज लुक किया दित सुख के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजं प्रभा के धर्मं तुझाय के अशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के छत्रं क्षत्रिय के बर्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप है कि आद अधि वह के आप अपि वह कि चित्रं वहीन के कै अधीन के रुचि रजा कै रही मै रेहा कह के पाक वे है वह के गह भूल गह वह के फुल गुना है के सान साय के कारण कुनिंद के रुचि देहंद के राजुक रही मै के कर्मं करी मै के सर्वं कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र काज्य है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र ताप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली मैं के परमं सही मैं के अकल आला मैं के साहिब कला मैं के हुस्नल वजू मैं तमाम रजू है हमें सलसला मैं सलीकत मुदा मैं गनीमुल से कष्ट है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम मैं रुजुअल निदान है हरिफुल अजीम मैं रजायक यकीन है अनिकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचित है अच्युत है के नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेक है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासी सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे
अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरी कह अमितो अमी कह सदैवं प्रभाहे अजयः अजाह भगवती छन्त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुलसलाम है सुमस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल की राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग पर नास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब की राह है के नरकंग पर नास है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीशुल आलेक है हमीसुल अपेक है जमीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मदपार छंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन पर नाम उन मन सलाम हर नर अखंडो बर नर अमंडो अन पवनास मुन मन प्रकाश गुनगन पर नाम जल थल मुदाम अंश जिवंग असुन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंडो दिस विष अपांडो जल थल महंत दिस विष बेअंत अन पवनास त्रित तर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जनाबात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडारु अनडट अपारु आडीठ धर्मु अतटीठ कर्मु अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अर काल्य है कल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरने जग के करने मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर हैं विश्वंपर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं कलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं जपा जपें तुपा तपें अकृता कृत्य अमृता अमृत्य अमृता अमृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित्य अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत्य अमृता अमृत्य जपा कृत्य अमृता अमृत्य निर्णायक हैं कलकायक हैं विश्वंपर है कुरुणालय है निर्पनायक है सर्पायक है पावभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत्य सर्वाकृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासु वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल लेख अपेख अनामु अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे
अजूनी अमूनी न रागि नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग भरमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल पर नामे समस्तुल पर नासे अगंजला नामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग पर नासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग पर नासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनी में हरियं करियं करिमुल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदा दिख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को दे

जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग निगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे।

तानु देव पनिंद निशाचर पूत पवेक पुआन जपेंगे। जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे। पुन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के भो पुंज खपेंगे। साध समूह पर सन फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र निरादप जाऊं त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजा दिकदान अनेक सुवंबर साज भरेंगे। ब्रह्म हिस्सर विष्ण सचिपत अंत बसे जम्फास भरेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं भगते नर फिर न दे तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो। नाथ फिरियोली सास समुंदन लोक गयो पर लोक गवायो। बास की उपख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो। साच कहूं सुर ले सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पान पूज तरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लखे हर वाची दिशा में काहू पछा को शीश निवायो।

जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबीर बास बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू आप हाथ दै मोहे बचावो। सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मूर्छा निज कर दै करियै सब बैरन कुआ संगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझो करो रक्षा। राख ले हो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जीव अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल।

राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दै जिच्छिन भुजायो आदंतिक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रण को पल मुंगत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तारे आप अपनी बूझ उचार तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील अनाथ असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपा हननुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के पिसजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा रज जे रज शेत जकीनी उत भुज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भय शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता शकल मलेश करो रनकाता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट जन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मैं हरे हो रित सिद्ध कर हूँ सब हुई दुष्ट छाछव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ तैले हो उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री अष्ट जप पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भौ निकट न तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सैस पनी जय अर्ध सैस पुन तीन कही जय पाद्रव सुदेष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गही जब ते तुमरे तब ते कुआं कतरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मतेक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो श्री उपान कृपा तुमरी कारु मैं न कहूँ सब तुहे बकार।

ते सत्कार्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो श्रद्धा भावना प्रीत सहित निता प्रति गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के सतगुरु जी के पावन दर घर दियां खुशियां प्राप्त करते हो। सो अज भी गुरु साहब जी ने उदम बख्शिश किए, समूह संगत ने हाजरियां भरियां, गुरु कृपा करे सबना की हाजरी दर प्रवान कर लए, सबना नूं दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन दीवाना की संपूर्णता ते आप जिया ने अज दे इलाही श्री मुखवार सरवण किए हैं जो तिलंग राग विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दातार जी की अमृत रसना तो उचारने पावन शब्द सतगुरां दे पवित्र अंग 721 अते 22 उपर सुभायमान है। इस पावन शब्द विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यही बख्शिश मेहरामत कीती है कि ये काया रूपी चोला जीव आत्मा रूपी काम नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरु वालों दे के भेजा गया है, पर इस चोले नूं शिंगारना सवारना बनाना इस कामण दे हथ वस है। जदों गुरु कृपा सदका इस शरीर रूपी काया रूपी चोले नूं प्रेम दा रंग चढ़दा है, भावना दा रंग चढ़दा है, तां इह काया इह कामण उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे घर अंदर प्रवान हो जांदी है। पर जिस काया नूं लभ लोभ अहंकार दी पा चढ़ी हुई है, माया दी रंगत चढ़ी हुई है, वो रंग भावें कितना भी सूहा क्यों ना होवे, वो शिंगार भावें कितना भी महंगा क्यों ना होवे, पर हंकार वाला हंगता वाला शिंगार उस वाहिगुरु परमात्मा नूं पाउंदा नहीं। इस पावन शब्द का भाव ही है कि असी इस शरीर राही मन राही जो भी कर्म कर रहे हाँ, मन की इच्छा होंगी है भी वह साढ़े कर्म रब की दरगाह विच रब के घर अंदर गुरु की नज़र विच प्रवान हो जाने, पर सतगुरु जी कृपा करते हैं जेडे कर्म प्रेम विच भावना विच श्रद्धा विच कीते जाते हैं वो कर्म जेडे ने रब की दरगाह विच गुरु की नज़र विच प्रवान होंगे ने, उन्हां कर्मां की बदौलत ही गुरु की कृपा बख्शिश प्राप्त होंगी है। जो कर्म असी अपने हंकार करके मूर्खता करके अज्ञानता करके हंगता करके करते हैं, दिसन विचों भावें किन्ने भी धार्मिक क्यों ना होण चंगे होण, वो कर्मा करके सदा रब तो गुरु तो दूरी बनती है। इस करके कोई भी कर्म करिए वो कर्म इस ढंग नाल करिए कि इन्हें साडी रूह का शिंगार बनना है, इस काया का शिंगार बनना है, तो ये रूह जिहड़ी है उस मालक के घर अंदर उस परमेश्वर के दर अंदर प्रवान होनी है। सो गुरु कृपा करे सबना नूं दरों घरों चढ़ दियां कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन जी। आओ अमृत बाणी आसा की वार दे कीर्तन दा समा होया है। भाई साहिब भाई सतनाम सिंह जी अते उन्हां दा जत्था आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़ रहा प्यार सत सरवण करिए, भुलां चुकां दी खिमा, समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

लख लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्याय सच जो मर जमे सो कच निकच महला।

0: दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा कारा बेकार
1: एक होंदा खाई चला एथाओ।

पहला जेकर सूतक मनिए सप्त सूतक होए गोहे अत लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाझना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिया

0: तेरे कंत न पावै चोलड़ा प्यारे क्यों धन से जय जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कारयो सत्संग जी सतगुरां जी अपार बख्शिश रहमत होई अमृत वेड़े आप सर्वा संगतां ने सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। उपरांत अज दे हुक्मनामे दीआं विचारां सरवण कीतीआं अरदास विच शामिल होए हो। पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता सतगुरु कृपा करन साडा सारिआं दा गाविआ सुणिआ महाराज दर ते प्रवान करन इसे तरह गुरु चरणां नाल जुड़े रहिए जीओ। बेनती है गुरु घर दीआं दो बिल्डिंगां नॉर्थ हाल एंड साउथ हाल बन रहीआं ने। आप संगतां वध चढ़ के सेवा कर रहे हो और भी आप संगतां दे चरणां च बेनती जिन्ना भी हो सके दसवंधी कार पेटा कढ़ के गुरु घर विच सेवा करके गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए जी। दूसरी बेनती है सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अप्रूवड द स्कॉलरशिप फॉर नर्सिंग एंड वोकेशनल कोर्सिस ऑफ वन ईयर। इहदी लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज अक्टूबर 15-26। एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन गुरुद्वारा वैबसाइट ते जाके तुसीं सबमिट कर सकते हो जी। दूसरी बेनती है 17 अक्टूबर नूं शनिवार कत्तक दे संगरांदी दिहाड़ा आ रहा है। आप संगतां दे चरणां च बेनती जरूर गुरु घर पहुँच के गुरु दे हुक्म नूं सरवण करना जीओ। 18 अक्टूबर नूं गुरबाणी कंठ मुकाबले जो स्टॉकटन गुरु घर दे विच हो रहे ने जिन्हां दा समां है सवेरे 8 बजे तों लै के शामी 5 बजे तक, उहदे विच भी तुसीं हिस्सा लै सकदे हो। इस गुरु घर दी लाइब्रेरी विच 12 अक्टूबर तों लै के 18 अक्टूबर तक गुरमत कैंप लगे ने। आप संगतां दे चरणां च बेनती जरूर लाभ उठाओ जी। इस कैंप दा समां है शामी 6 बजे तों लै के शामी 8 बजे तक जी। उस तों बाद 23 अक्टूबर नूं जन्मदिन बाबा बुढ़ा साहिब जी दा आ रहा। 27 अक्टूबर नूं तन तन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश पुरब आ रहा। यह सारे दिहाड़े आप संगतां दे सहयोग नाल गुरु घर दे विच वड्डी पद्धर ते मनाए जाणगे। आप जरूर संगतां ने सहयोग बख्शिश करना जीओ। गुरु घर के प्रोग्रामां की होर जानकारी लैण वास्ते तुसीं साडे गुरु घर के सकत्तर साहब सरदार रजिंदर सिंह जी मंगर साहब उन्हां नाल संपर्क कर सकते हो। उन्हां दा फोन नंबर है 408-712-4145 ते जाके होर जानकारी लै सकते हो। आओ जो सरबत दे भले वास्ते सहज पाठ चल रहे ने। सत्कार जो भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पहुंच चुके ने, उन्हां दी रसना तो सहज पाठ सरवण करिए जी। गुरु के लंगर त्यार ने छक के जान की कृपालता करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी आप जी विटभागी हो जो गुरु चरणा की हाजरी भर रहे हो, घर जुड़ बैठे हो। आओ समा होया अमृत बाणी के श्री सहज पाठ का पावन अंग 1366 तो अज के श्री सहज पाठ आप प्रारंभ करने हैं। भगत कबीर जी के श्लोक चल रहे हैं। 1366 अंग तो अज के श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं।

साहब वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा सदका नेता प्रति गुरु दरबार विच बैठ के घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी कृपा करन, सबना दी हाजरी दर प्रवान करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह हिरदिया परिवारां नूं सतगुरु जी बख्शिश करन। बाणी पढ़दिआं बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईआं हन, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शे योग ने, भुल्लां ना चितारनीआं जी। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बेनगुर शब्द न छूट सकोए, पाखंड की न मुक्त न होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत काश किए बैसन को थाओ, रात निंत रात दिन अंत किए पाओ पाओ। जिन किए कर वेखण हारा, अवरण दूजा सिरजन हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्ण महेशा, देव देवी देव उपाय वेसा। ज्योति जाति गणत न आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़ै किस आखा दूर। चौथ उपाय चारे वेदा, खाणी चारे बाणी भेदा, अस दसा खट तिन तीनों पाए, सो बुझे जसा बुझाए, तीन समावै चौथा वासा, प्रणवत नानक अमता के दासा। पंचमी पंच भूत बेता लाया, अपगोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाग सब तृप्ता से। एक रंग रात एक मरतूर, एक दर घर साचा देख हदूर। झूठे चाक सब तृप्ता से, झूठे कहो नाही पतनाओ, कहो न सुचा काला काओ। पिंजर पंखी बंदिया कोए, चेरी पर मैं मुक्त न होए, तव छूटे जा खसम छिड़ाए, गुरमत मेले भग दृढ़ाए। खसमी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निरालावा जे, जे प्रभावै ता मैल बुलावै, शब्दे भेदे तो पत पावै। कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साच समावै। सप्तमी ससंतोख शरीर, साफ समुंद भरे निर्मल नीर, मजन सीर सचरदा विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार। मन साचा मुख साचो पाए, सच निशाने ठाक न पाए। अष्टमी अष्ट सिद्ध, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच ने केवल पर कर्म आराधै। पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनवा रहा लिवलाए।

सारा प्रव्या दे साध रखवारा। आज युगादि है पियोग परंपर करण जोग, दसवीं नामदान स्नान अंदन मजन सच्चा गुण ज्ञान। सच मैल न लाग परम्प भाग, बिलमना तूट सकाचै ताग, ज्यो तागा जागे वै जाणो, अस्थिर चीत साच रंग माणो। एकादशी कृत वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै व्रता तम चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै। निर्मल निराहार ने केवल, सुचे सचे ना लाग मल, जद देखो त एको एका, होर जी उपाय वेको वेका। फलोहार किए फल जाए, रस कस खाव खाए, साथ गुआए, कूड़ा लालच लपटे लपटाए, छूटे गुरमुख साच कमाए। द्वादश मुंद्रा मान्यो तूता, न जाग कबे न सूता, जागद जाग रहे लिवलाए, गुर पर चेते स्काल न खाए। अतीत भय मारे बराई, प्रणत नानक से लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जान, बाहर जातो भीतर आण, बरती बरत रहे ने काम, जपा जप जपा जाप जप मुख नाम। तीन पवन महे को जान, सच संयम साज पछाण, तेर सरवर समुंद किनार, अमृत मोर शिव शिखर लिवड़ा तार। डर डर मरे न बूढ़ा कोए, नि डर बूढ़ मरे पत खोए, डर मैं घर घर मैं डर जान, तख्त निवास सच मन पान। चौदस चौथा था वै लय पावै, राजस्थान सतकार समावै, ससियक कर सूर समावै, जो जूत की कीमत पावै, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मंड रह लिवलाय। अमावस्या चंद गुप्त गणार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन ज्योते लोई, कर कर वेखै करता सोई, गुरते दिस सोते सीमाए, मन में भूल आवै जाए। घर दर थाप तिरथान सुहावै, आप छाण जा सतगुर पावै, जह आसा तै बिन सबिनासा, फूटै कपर दुबदा मनसा, ममता जाल तेरै उदासा, प्राणवत नानक हमता के दासा।

आदित वार आद पुरुख है सोई, आपे वर्ता अवर न कोई, ओत पोत जग रह परोई, आपे करता कर सोई। नाम रते सदा सुखोई, गिर विरल गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपो गुणता सार, गम गोचर परम्पर स्वामी, जिन पग लग त्यावो होए दासन दासार। सोमवार सच रह समाए, तिसकी कीमत कही न जाए, आख आख रहे सब आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए। अगमे गोचर लिखिया न जाए, गुर के शब्द हर रहा समाए, मंगल माया मोह पाया, आपे सिर सिर तंद लाया, आप जाए सोई बूझै, गुर के शब्द हर घर सूझै। प्रेम भगत करे लिवलाए, हमें ममता शब्द जलाए, बुद्ध वार आपे बुद्ध सार, गुरम करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हमें मलख होए, दार सच्चे सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवे देवनहार, जो देवे तिसको बल जाइए, गुर प्रसादी आप गवाइए, नानक नाम रखो।

सरनाई, जो जो मिलै जस लह मिलाई, सो मिलाए जस मिला जस लह मिलाई, शुक्रवार प्रवरय समाई, आप पाए सब कीमत पाई, गुरमुख होवे शुक्र विचार, सच संयम करनी है कार, वर्तने मृता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा, छनिचर वार सौन सास्त विचार, हो मैं मेरा पर मैं संसार, मन मुखंदा दूजे पाए, जम दरबादा छोटा खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए, सतगुर सेवा सेवड़ भागी, हो मैं

दिन से रायण ते वह संसार आवागौन किया करतार नेचर साच रया करतार नान गुरमुख भुजै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरखा पेसर साजे जी जंत माया मुपाजे दूजे पाए पर पंच लागे आवे जावे मरया पागे सदगुरु भेटिया सो जी पाए पर पंच चूकै सच समाए जाकै मस्तक लिखिया लेख ताकै मन वस्या प्रवेख रहा श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेखै कोई न मेटा तेरा लेखै सिद्ध साधक जो कहे कहाए पर मैं भूलाया वह जाए सात गुर सेवै सो जन बूझै हों मैं मारे तां दर सूझै एक ते सब दूजा हुआ एको वरतै वरन बिया दूजै ते जो एको जाणै गुर कै सब धर दर निशाणै सात गुर भेटे तां एको पाए विचों दूजा ठाकर हाए जिसदा साहेब डाडा होए तिसनों मार न सकै कोए सेवकी साहेब की सेवक रह सरनाई आपे बक्से दे वड्याई जिसते ऊपर नाही कोए कौन डर डर किसका हो गुरमति सांत वसै शरीर शब्द चीन फिर लगे न पीरा वह न जाए ना दुख पाए ना मेरा ते सही समाए ज्ञान गुरमुख वेखै हदूर मेरा प्रभ सद रहा भरपूर एक सेवक एक परम पुलाए आपे करे हरे आप कराए एको वरतै अवर न होए मन रोस की जय जय दूजा होए सतगुर सेवे करनी सारी दर साचे साचे विचारी तिथि वार सद सब शब्द सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए तिथि वार सब आवै जाहे गुर शब्द ने चल सदा सच समाए तिथि वार ता जा सच राते बिन आवै सब पर मैं काचे मान मुख मरै मर बिकति जाहे एक न चेतै दूजै लोभाए अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार आप उपायो पावन हार आपे की सोन गुर विचार बहुते भीख करै भीख धारी पाप भरमै काची सारी ऐसै सुख न आगै होए मन मुख मोए अपना जन्म खोए सतगुर सेवे भरम चुकाए घर ही अंदर सच महल पाए आपे पूरा करे सोए तिथि वार दूजा दोए सतगुर बाजो अंध गुवार तिथि वार सेवै मुक्त गुवार नानक गुरमुख बूझै सो जी पाए एक नाम सदा रहा समाए बिलावल महला पहला चंत दखणी ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद ने वेलड़िया गोए लाई राम मटकी डार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यों रही गोयल सै सब सिगारिया कर जोड़ गुर पै कर बिनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंद ने वेल सुंदर देख फिर साधारिया साच न वे लड़िए जोबन बाली राम आओ न जाओ कही अपने सहनाली राम ना अपने संग दासी मैं भगत की मैं भगत हार की पावै अगाध बोध अकथ कथिया सहज प्रभ गुण गावै राम नाम रसाल रसिया रवै साच प्यारिया गुरसबदिया दान किया नानका विचारिया श्री धर मोहड़ी फिर संगसूती राम गुर कै पाए चलो सच संगूती राम धन सच संगूती हर संग सूती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मन नाम वस्या सतगुरु हम मेलिया दिन रहन घड़ी नच सा विसरै सा सास निरंजनो सब जो जगाए दीपक नानका पौ भंजनो जो तस वाड़िए त्रि भवन सारे राम घट घट रव रया लख पारे राम लख पार पार सचाया मार मिलाइए हमें ममता लोभ जालो शब्द में मैल चुकाइए दर जाए दर्शन करी भाणै तार तारण हारिया हर नाय अमृत चाक तृप्ति नानका उरतारिया बिलावल महला पहला मैं मन चाओ कणा सच विगासी राम मोही प्रेम पिरे प्रभ बिनासी राम अवगतो हरनाथ नाथ है तिसै पावै सोथिया कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिया
मैं अवर ज्ञान न ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे भीक भवनी हट न जाना नानका सच गए रहे पिंडी रहन पली दिन सुहाए राम निज घर सुतड़िए प्रम जगाए राम नाव हान नाव धन शब्द जागी अपने प्रभाणिया तज कूड़ कपट सुभाव दूजा चाकरी लोबाणिया मैं नाम हर का हर कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पाणिया जाग सलुनड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मनियड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूझे ओ शब्द समाए आप गुवाए त्रिपम सो जी सुजय रह अतीत परंपराता साच मन गुण सारिया ओह पूर रहा सर्ब ठाई नानका और उतारिया मैल बुलाइडिये पंस नहीं राम गुरमत मन रसी सी जस दे ही राम मन मारे जय शब्द सी जय लुत्राय लोकनाथ पिछा

पवनसुहावड़ा कर्तस्पागी राम प्रवकारी आयड़ा गुरचरनी लागी राम गुरचरण लागी सहजागी सगलिच्छा पुनिया मेरी आसपूरी संतूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद आनंदन सहजवाजे अंग मात मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बिलावल महला पंजवा भाग सुलखना हर कंत हमारा राम सब चित्रा तिस धुन दरबारा राम आनंद आनंदन वजय वाजे दिन श्रैणी उमा तै रोग सोग न दुख व्यापै जन मरण न ताहा रे दसे दसुदारा से अमृत भगत परे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार मैया पार ब्रह्म प्राण आधारा सुन सखिय सहेलडियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम राव है तिसे भाव एक निमख पलकना त्यागी है गै कंटलाइय न लजाइय चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह नत कसौ न तावै बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पद भी पावै विषम विषम पई पे गुण अपनासी राम कर गह पुजाल गही कटक जमकी फांसी राम कह गह पुजाली नी दास की नी अंकुर दोत जनाया मलन मोह विकार नाठे दिवस निर्मलया दृष्टारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिनिहार रस पिया बिलावल महला पंजवां चंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असि फिर का मंगल गावै तजमान सखी तजमान।

सखी मत अपने प्रीतम पावै। तज मान मोह विकार दूजा से वेख निरंजनो, लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो। होय दास दासी तज उदासी बोर विधि न तावा, नानक पयम पय करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत प्रे का नाम मैं अंगुल टूनी, ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी। मोहनी महाविचित्र चंचल अनेक पाप दिखावे, होय टीठ मीठी मना।

मोहे नाथ प्रे नाथ जो जानो त्यो रखो चतुराई मोहे नाय रिजावो कह मुखो न चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं न रूप तूप न नैन बंके जय पावे तय रख तुही जय जय जय अम्पै सगल जाको करुणा पत गात किन लखो नानक अम्पै सेव सेवक जो राख जो जानो तो मोहे त्यो मोहे रखो मोहे मछली तुम नील तुझ बिन के अवसर है मोहे चात्रिक तुम बूंद तृप्त मुख पर है प्यास मेरी जी या प्राण पर लाडले लाड लडाए सब मैं मिल हमारी हुए गते चीत चित्व मिट अंधारे जो आशक भी दिन चरै नानक पयम पैपरे संग मेली मछली नीर न विसर तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुखगामी आनंद मंगल रस घना नव नवल नव तन बहु नाह बाला कमल रसना गुण पणा मेरी सही सोही देख मोही सगल सहसा दुख रा नानक पयम पय मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल महला पंजवा चंत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखा निद पियो सुख सागर प्रपिट जय नानक सुखी हो ते जियो चंत सुख सागर प्रपाय जाहो है पागो राम मानन मान वैया हर चरनी लागो राम छोड़ स्यान पचातरी दुर्मत बोतिया गो राम नानक पो सरनाई राम राय थिर होए सुहागो राम सो प्रभ ताज कत लागिय जिस बिन मर जाय राम लाजना वह ज्ञान मत दुर्जन बिरमाय राम पदत पावन प्रभ त्याग करे कोकित कोकत ठहराय राम नान भगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाय राम श्री गोपाल न उचर बल गई है दो चारण रसना राम प्रभ भगत बचल न सेवई काया काग रसना राम प्रमो ही दुग न जान कोट जोनी बसना राम नानक बिन हरे अवर जी चाना बिष्टा क्रम पसन माराम लाए बिरो भगवंत संगे हुए मिल बरा गण राम चिंदन चीर सुगंध रसा हो मैं बिकत्या गण राम ईतूत नंडोलिया हर सेवा जगन राम नान जिन प्रपाया अपना साया अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खोजो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गाइय पार ब्रह्म करंगे राम सो प्रभ साधि सेविय पाइय फल मंगे राम नानक प्रभ शरणागति जब अनत रंगे राम एक तल प्रभु न विसरै जिन सब किस दीना राम बेटा वडभागी में लावड़ा गुरमुख परचीना राम बाह पगड़ तम ते काटिया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीव शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ

तुम आपे आवरता सब जग सवाया तुद आपे ताड़ी लाया आपे गुण गाया हर त्याव भक्तो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावर न हो वई मन मुखाए न पाए पाखंड भगत न हो वई पार ब्रह्म न पाया जावे जाए मन हठ कर्म कमावणे थाए न कोई पाए नान गुरमुखा बिचारिए विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जमण मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल कर हो तुम प्यार हो एक सो लिव लाए जन मरण दुकटिए सचे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलै सतगुर पाए सतसंगति बै भाव कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद कर हर भगतां का मेली सरबत सौ निस्सल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुद अपड़ कोई न सकै साब चक चक चक चक पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदा ते ब्राह्मणा जे चलै सतगुर पाए जिनका हृदय वा हर वसाए हों मैं रोग गवाए गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए इस जोग में विरले जा ब्रह्म इस जोग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदा है चितलाए नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए महला तीजा सात गुर की सेवना कीतिया सत न लगो पाओ हो मैं रो कमावना अत दीर्घ वो सुआओ मन हठ कर्म कमावने फिर जो नहीं पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पलै पाए पौड़ी साब वड़े आईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस मंगिया साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जे की चै सतगुरु पास तां सर्व सुख पाईए गुरपुरा हर उपदेश दे सब सब भुख लह जाईए जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाईए श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दसन सफल है जे हा को इच्छे ते हा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख हुआ सच वसिया मन आए सच त्याय अमरा पद पाए आयन शब्द बजाए सचो दस पसरिया गुर कै शब्द सुभाए नानक जिन अंदर सच है से जन छप है ना किसै दे छपाए श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जाको नदर करे मानसे देवते पै सची भगत इस दे हों मैं मार मिलायन गुर कह शब्द सुचे नानक सजे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नाव की वड्डी वड्याई हर करता आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उन्हां अंदर हिरदा पाई निंदक दुस वड्याई वेख न सकन उन्हां पराया भला न सुखाई क्या होवै किस ही की झख मारी जा सच्चे सिओ बणाई जे गल करते भावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब झख झख मरै लुकाई श्लोक महला तीजा त्रे गया सा दूजे भाव की जो मोह माया चित लाए हर सुख पलर त्या गया नाम सार दुख पाए मन मुख ज्ञानी अंदले जन्म मरै फिर आवै जाए कार्य सिद्ध न होमनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवै ते सतगुरु मिलाए सो हर हर नाम त्याए नाम रते जन सदा सुख पाएन जन नानक तिन बल जाए महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन मोह संसार सब को जम कै चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी जम लगदा सो बरै जिस बख्सा करतार नानक गुर प्रसादिए मन तां तरै जा छोड़ै अहंकार आसा मनसा मारे निराश होए गुर सबदी विचार पौड़ी जितै जाइए जगत मैं तिथै हर साई
अग्गै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई कूड़ियारा के मोह फिटकिया सब भक्त वड्याई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक छाई जन नानक साचेरा दिया गुरमुख सुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरा भाग सतगुर पाई है जहा प्रभक्श करे उपावा सिर उपाओ है नाम नाओ प्राप्त होए अंदर शीतल सांत है हिरदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाय वड्याई होए महला तीजा। ये मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निदान सुखदाता तेरा मन वसाए हो मैं जाए अभिमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी।

जो किच हर करावै सो एक रहै सब हर के रथिये। सो ऐसा हर सपना का प्रभ सात गुर कै वल है, तिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गुले कर सतगुर अगै कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वड्याई देखो हर संतो, जिन विचौकाया नगरी दुश्मन दूत सब मार कडिये। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न ला गए, दुख विचकार कमावनी दुख वरतै दुख आ गए। करमी सतगुर भेटिए ता सच नाम लेव ला गए, नानक सहजे सुख होए अंदर अंदरो परम पौ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना नाम जप सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्रगासिया, तिमरा ज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मन मुख मैलै मरे गुवार, गुरमुख निर्मल हर राख्या और तार। पंडित नानक सुनो जन पाई, सतगुर सेव हो मैं मल जाई। अंदर संसार दुख व्यापै सिर धंधा नितमार, दूजे पाए सुतै कबो न जागै। माया मोह प्यार नाम न चेतै सबदन विचारै, मन मुख का विचार हर नाम न पाया मिर्था जन्म गुआया। नानक जम मार करे खुआर पौड़ी, जिसनो हर भगत सच बख्सियन सो सच्चा साहो।

अपना पछाना है, आप पछाना था एक का जाना है। अपना माता सो कबो न माता, कह कबीर रामाय रंग राता। बिलावल गृह ताज बन खंड जाइए, चुनखाइया कंधा है। जो बिकार न छोटे पापी मन मंदा, क्यों छूटा कैसे तरो पाप जल निध पारी। राख राख मेरे बीठला जन सरन तुम्हारी। बिखय बिखय की बासना तजिय न जाई, निक जतन कर राखी है फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया किच किया न निका, यह जीरा निर्मोल को कौडी लगमी का। कह कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी, तुम संसर नाही दयाल मोहे संसर पापी। बिलावल नेत उठके नेत उठ काग नेत उठ कोरी गागर आन लिपत जियो गयो। नेत उठ कोरी गागर आन लिपत जियो गयो, ताना बाना कछुना सोचे हर हर रस लपट्यो। हमारे कुल कौने राम कहो, जबकि माला लई निपूते तब ते सुख न पयो। रहा सुनो जिठानी सुनो दरानी, अचर जेक पयो। सात सूत इन मुंडिये खोए, ए मुंडिया क्यों न मोयो। सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु राम दयो। संत प्रहलाद की पै जिन राखी हर नाक से नाक बिदरयो। कार के देव पितर की छोटी गुर को शब्द लयो, कैद कबीर सगल पाप खंडन संत है लय उधरयो। बिलावल को हर समान राजा, ए पूप सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा। हाओ तेरो जन होए सोए कत डोले, तीन पवन परछा जा। हाथ पसार सक ना हाथ पसार सक को जन को, बोल सक न अंदाजा। चेत चेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा, कह कबीर संसा परम चूको त्रू प्रहलाद निवाजा। बिलावल ला राख लियो हम ते बिगरी, सील धर्म जा भगत न कीनी। हो अभिमान टेड पगरी रहाओ, अमर जान संचिए काया मिथ्या काची गगरी। जनन जिन्ह निवास साज हम किए, तिसा बिसार अवर लगरी। संदक तो साधनी कहियो सरन परे तुम मरी पगरी। कह कबीर है बिनती सुनियो, मत कालो जम की खबरी। बिलावल दार माते ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दी जय खोल की वार रहाओ। तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हार। मांगो काहे रंक सब देखो, तुम ही से मेरो निस्तार। जय देव नामा वेद पसदामा, तिनको कृपा पई है अपार। कह कबीर तुम समरस दाते, चार पदार्थ देत न बार। बिलावल डंडा मुंद्रा खिंथाया धारी, भ्रम कह पाए पवाए भेख धारी। आसन पवन दूर कर बवरे, छोट कपट ने तहार भाज बवरे। रहा जे तू जाचे सूत्र पवित्री पवन भोगी, कह कबीर कह सो जग जोगी। बिलावल बिन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे। इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे। किंचर पीर न उपजे जन को, जन कहा करे बेद चारे। रहा त्रिग तन त्रिग तन त्रिग हे माया, त्रिग त्रिग बल बुद्ध फनी। इस माया को दृढ़ कर राखो बांधे अब चन्नी। क्या खेती क्या लेवा देवी, पर पंच झूठ गुमाना। कह कबीर ते तब बिगूते आया काल निदाना। बिलावल शरीर सो और पीतर आचे कमल अनूप, परम ज्योत पुरखो समो जा कर एक न रूप। रे मन हर भाज भ्रम तजो, हे रे मन हर भाज भ्रम तजो, जग जीवन राम रहाओ। आवत कछु न दिसई न दिसै जात, जय उपजै बिन सहत ही जैसे पुरवण पात। मिथ्याकार माया तजी सुख सहज विचार, कह कबीर सेवा करो मन मांझ मुरार। बिलावल जन्म मरण का भ्रम गया, गोविंद लिव लागी। शिव जीवत सुन समान्या, गुरसाखी जागी। रहा काशी दे तुन उपजय तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडिता तुन कहां समाई। त्रुकटी सांध में पेख्या घाटू घट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी घट माए त्यागी। आप ते जानिया ते समाना, कौ कबीर अब जानिया गोविंद मन माना। बिलावल
चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौने दो ताके सहज सहज जस बोले देव रहाम तब हे मत जो सब मैं पेख तब ए मत जो सब मैं पेख कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया तेट के लय नरजा मन तो लय देव जय ओ जय तही सुख पावे माया तासना झोले देव कह कबीर मेरा मन मान्या राम प्रीत की ओ लय देव बिलावल बाणी।

ज्ञान अंजन मुख गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना राव नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन स्यो ज्यो जग जीवन स्यो जियो समाना बाल बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारी देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी अस दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जान तुम्हें के किछ नहीं पव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रपूर्ण काम राव जो तेरी शरणागता ते नाही पार ऊच नीच तुम ते तरे आलज संसार कर दास कद कथा बो काय करी जय जैसा तू तैसा तुही क्या उपमा की जय बिलावल

ब्रह्मन बैसूद अरखतरी क्यों ब्रह्मन बैस सूद अरखतरी डोम चिंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भजन से अवतार तारे कुल दोए तन सुगाओ तन सुठाओ तन पुनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर छतर पर राजा भगत बराबर।

नृप कन्या का कारण है एक एक भया भेक धारी कामारसी सुआरसी वाकी पै सुवारी ताव गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नास सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास है रहाओ एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे प्राण गए सागर मिले पुन काम न आवे प्राण जुथा के फिर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मोए नौका मिले को काय चिड़ावो मैं नाही कुछ कछ हो नहीं नहीं मैं नाही कछ हो नहीं कचाहे न मोरा अवसर लज्जा राख लियो सदना।

पाए, पंडित नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए, दिख्या दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए, राम कली महला पहला, हम डोलत देड़ी पाप परी, है पवन लगे मत जाई, सन्मुख सद पेटन को आए नेह चौदे वड्याई, गुर तार तारण हारिया, देह भगत पूरन अविनाशी, हो तुझको बलिहारिया, रहाओ सद साधक जोगी अर जंगम, एक सद जिनी त्याया, पर सत पैर सजगते स्वामी, अखर जिन को आया, जप तप संजम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेश्वर नानक पेट्यो साचे सबदन बेरा, राम कली महला पहला, सुरती सुरत रलाये एत, तन कर तुल्हा लंघे जेत, अंतर पाहे तिसे तू रख, अहनस दीवा बले अथक, ऐसा दीवा नीर तराए, जत दीवे सब सोजी पाए, रहाओ हच्छी मिट्टी सोजी होए, ताका किया माने सोए, करनी ते कर चक हो, टाल ऐ

खत्री ब्राह्मण सूद के वेश नृत्य न पाया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनु निवण मन्नण तेरा नाओ साच पेट बैसन को थाओ सत संतोख हुवे अरदास ता सुन सद भाले पास नानक बिरथा कोए न होए ऐसी दरगह साचा सोए रहाओ प्राप्त पोता करम पसाओ तू देह मंगत जन चाओ पाडे पाओ पवै तत आए तुरत छोड़ी कीमत पाए जिन किछ किया सो किछ करे अपनी कीमत आपे तह गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तिकार कह मंगत जन मागत मान न पाया सह किया गला दर किया बाता तैता कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कवन बुझे बिद जाने उत्पज चलत आप कर चीने आपे तत पिछाणे ऐसा ज्ञान विचार है कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन में रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तन मह ध्यान ध्यान मह जान्या गुरमुख अकथ कहानी मन में जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिव लाई राम कली महला पहला जाहर प्रभ कृपा तारी ताहां मैं बिच्छो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर सब दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद वेद गुरबाणी मन राता सारग पाणी तह तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सतगुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन भोजन मागत भागे खुदिया दुष्ट जलै दुख आ गए गुरमत नहीं लीनी दुर्मत पत खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देख्या पीख्या पाए शब्द तृप्ता सै रहाओ पांच बैल गडिया देहतारी राम कला निभै पत सारी तर तुटी गाडो सर पार लकरी बिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग वियोगी भुगत नाम गुर शब्द विचार अस्थिर कंद जपै निरंकारी सहज जकोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा घर पहला। सत जुग सच कहे सब कोई, घर घर भगत गुरमुख होई। सत जुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझै को विचार। जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवै।

रखाए, गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए, कल युग धर्म कला इक रहाए, इक पैर चले माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटे नाम उधार, सब जग मह साचा एको सोई, सब मैं सच दूजा नहीं कोई, साची किरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाने कोई, सब जग मैं नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूजे कोई, हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम बडियाई होई, राम कली महला चौथा घर पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, जे बड भाग होवै बड भागी, ता हर हर नाम त्यावै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास हुवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ, हीरा रतन जवेहर माणक बहु सागर भरपूर किया, जिस बड भाग होवै बड मस्तक तन गुरमत कड कड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मन मुख नहीं लिया, तृण ओले लाख छपाया, मस्तक भाग होवै तर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाए, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए, राम जान गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कहे सो मुक्ता, राम जपत सुहाए रहाओ, जे वड भाग हुवै मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालद दुख लह जाए, हर के लोग राम जन नीके, भाग हीन न सुखाए, ज्यो ज्यो राम कहे जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए।

दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी शरणाए। हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बा

गुरमुख साध सही प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावे, राम मोको हर जन मेल, मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत

गुरु चरणी जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण न रह है बिन प्रीतम बिन देखे मर है मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आए हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूजै दूजे मन हर जप जप्यो ज पाया नाम हीन फिर है से नक्ते तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जिवाल लै स्वामी रद अंतर नाम बसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड़ा वड पूरख है जित मिल गए हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन

माघ है रिद माघ है हाथ पसारे हर जस जप जप बड़ बडेरा गुरमुख रखो उर तारे जे बड़ पाग हो वह ता जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे राम कल राग राम।

जैसा लिखत लिखिया तुर करते हम तैसी किरत कमाई मन तन थाप किया सब अपना एहो आवन जाना जिन दिया सो चेतन आवे मुहे अंध लपटाना जन किया सोई प्रभ जाने हर का महल अपारा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा राम कली महला पांचवा पवो चरणा तल ऊपर आवो ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जान हो तो दर्घ सुख पावो संतो ऐसी कथो कहानी सर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ पर पांच छोड़ सहज कर बैस हो झूठा कहो न कोई सतगुरु मिलो नवे निद पावो इन बिद तत बिलोई परम चुकाव हो गुरमुख लेवलाव हो आत्म चीन हो पाई निकट कर जान हो सदा प्रभ हाजर किस स्यो करो बुराई सतगुर मिलिए मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिनी कल मह हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पांचवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतरी सगल बियोगनी एह बिद है मन जोगनी मोहो सोग रोग लोग ना व्यापै ते हर हर हर रस भोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह शिव सगति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहा निवासा जह अविगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कह नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पांचवा त्रै गुण रहत रहे नरारी साधक सद न जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूरन सतगुर कै खजाने अचर्ज किछ कहन न जाई बस्त अगोचर पाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कहे सुनावे कथन कहने को।

रहाओ तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मह माणक लाला, तुम देवो तल संक न मानो, हम पूछो सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खेल है सब लाड लडाभो, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूरन पूरर है संपूरन, हम पी संग अगाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पंजमा, कर कर तल पखावज नैनो, माथे बजे कबाबा, करन हो मदो बासुरी बाजे जिहवा।

लखन हार दयाला जेता साज सिगारी रहाओ आखार मंडली तरण सबाई ऊपर गगन चंदोआ पवन बिचोला करत अकेला जलते ओपत होआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा होआ चंद सूरज दोए जरे जरागा चह कुंट पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक ऐ पीतर साथे पिन पिन होए भाव दिखाव है सभो निरारी पाखे कर कर निरत होवे दिन राती कट कट वाजे तुरा एक नचाव है एक पवाव है एक आए जाए होए तुरा कह नानक सो बाहर न नाचे जिस गुर पेट पूरा राम कली महला पांजमा।

कोई कहे, तुर्क कोई कहे, हिंदू कोई बाछे पिस्त कोई सुर गिंदु, कह नानक जिन हुकम पछाता, प्रभ साहेब का तिन तेद जाता। राम कली महला पांजमा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल।

चलत प्यार हाव, अगली कछ खबर ना पाई, रोवन हार पै उठ सदाई, परम मुह के बांध बंद, सुपन पया पखलाए आंद, एहो तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुकम अपार, नह को मुआ ना मरण जोग, नह बिनसै

धर्म चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है फिर न खाई महाकाल। रहाओ कोट जन्म परम भ्रम भ्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो, बैन गुर पूरा।

नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थर। यो जपया नाथ बिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई। रहाओ दूजा राम कली महला पांजमा करन करावन सोई आन न दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरले डिठा। रहाओ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पै नह काम।

पंजमा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूरन रहत उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे अपना तहया आपना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ राख्यो साल विराम मन कीनो दे दिस विश्राम तिलक चरावे पाई पाए लोक पचारा अंध कमाए खाट कर्मा अर आसन तोती पागठ ग्रह पड़े नित पोथी माला फेरे मंगे भूत एह बिद कोए न तरियो मीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रै गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तसकी सरणी पाए राम कली महला पांजमा कोट बिगन नहीं आभे नेर अनेक माया है ताकि चेर अनेक पाप ताके पानी हार जाको माया पही करतार जिसे सहाय होए भगवान अनेक जतन हुआ कै सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी केतक भरन बल बल जाइए ताके चरण तन ही किया जप तप ध्यान

साध संग मिल पै परगास, सहज सुख आस निवास। पूरे सतगुरु दिया विसास, नानक होए दास निदास। राम कली महला पांजमा, दोष न दीजे काहू लोग, जो कमावन सोई भोग। आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया तंद। ऐसी जानी संत जनी, प्रगास पया पूरे गुर बचनी। रहाओ तन तन कल्त मिथ्या, विस्थार हैवर गैवर चालन हार। राज रंग रूप सब कूर, नाम बिना होए जासी तूर। परम पुले बाद अहंकारी, संग नाही रे सगल पसारी। सोग हरख मैं दे बरतानी, साकत एव ही करत बिहानी। हर का नाम अमृत कलमाहे, एहो निदाना साधु पाहे। नानक गुर गोविंद जिस तूठा, कट कट रमिया तिन ही डिठा। राम कली महला पांजमा, पंच शब्द तह पूरन नाद। अनहद बाजे चर्ज बिस्माद, केल करे संत हर लोग। पार ब्रह्म पूरन निरजोग, सुख सहज आनंद पवन। साध संग बैस गुण गावे, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण। रहाओ उहा से।

पांचमा सिंचे दर्व देह दुख लोग तेरे काज न अवरा जोग कर अहंकार होए वर्त है अंध जम की जेवड़ी।

साथ, जित लाभ है तित लाघो स्वामी, नानक साहेब अंतर जामी। राम कली महला पांजमा, जो किछ करै सोई सुख जाना, मन समझ साध संग पतियाना, डोलनते चुका। ठहराया सत माहे लये, सत समाया दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन मह मानी, महापुरुष का संग पया रहाओ, सगल पवित्र सर्व

अड़सठ तीर्थ जह साध भगत है, तह बेकुंठ जह नाम उचर है, सर्व आनंद जब दर्शन पाय, राम गुणा नित नित हर गाय, आपे काट काट रहा व्याप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप, कपट खुलाने ब्रह्म नाठे दूरे, नानक कौ गुर पेटे पूरे, राम कली महला पांजमा, कोट जाप ताप विश्राम, रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनेक रूप रंग भोग रसै, गुरमुख नाम निमख हृदय वसै, हर के नाम की वडियाई, कीमत कहण न जाई।

आए न जाए डोले कतनाही, जाके नाम बसे मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद, गुरमुख जपिए उतरे चिंद। नानक को गुरु दिया नाम, संतन की टहल संत का काम। राम कली महला पांजमा, बीज मंत्र हर कीर्तन।

हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय बस वासै पौजल पार परला रहाओ। नाम निदान त्याए मन अटल ता छुट है माया के पटल। गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद बिचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा। सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग। छोड़ सियाणप बहुत चतराई मन बिन हर।

ब्रह्मांड राम जनी कीनी खंड खंड जो मागे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कछु न लहे इसे त्याग सत संगत करे बड़भागी नानक उहो तरे राम कली महला पांचवा आत्म राम सर्व में देख पूरन पूर रहो प्रभ एक रतन अमोल हृदय मह जान अपनी बस्त तू आप पिशान पी अमृत संतन प्रसाद बड़े भाग हो है तो पाये बिन जेहवा क्या जाने स्वाद रहाओ आठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रकाश न दिसे अंधेरा पशु प्रीत कास संग रचे जिस नहीं बुझावे सो कित बिद बूझे जानन हार रहा प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान विगास विगास अपना प्रभ गाव है नानक तिन जम नेड़ न आवे है राम कली महला पांचवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास निरास एहे बित काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गाव है हर जन अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ आए बन्यो पूर्वला भाग जन्म जन्म का सोया जाग गई गलान साध कै संग मंतन रातो हर कै रंग राखे राखन हार दयाल ना किछ सेवा ना किछ काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बुढ़त दुख में काड लिया सुन सुन उपजो मन में चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत परम गत पाई गुर प्रसाद नानक लिव लाई राम कली महला पांचवा कौडी बदले त्याग रतन

परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही रहाओ अमृत कौरा बिख्या मीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिजाना नाम सुनत जन बिछो डसाना माया कारण साधी चूरे मन मुख कभे न उस्तत करे।

मोह मगन लप्यो प्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पांजमा रैन दिनस जपो हर नाओ आगे दर्द है पावो थाओ।

हो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिसम पै बिसमादा, परम गत पावे हर सिमर प्राणी। रहाओ

भव जल तरिय प्रभ के रंग देही तोए न उतर मैल हमें व्यापे दुविधा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए।

भागा निरपो मन बसै, अमृत नाम रस नानत जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सचा तन लाहे। तोट न आवै अखट भंडार, नानक।

सुख सहज दया का पोता, हर पगता हवा लय होता, मेरे राम को पंडार, खात खर्च कछु तोट न आवे, अंत नहीं हर पारावार। रहाओ कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाद गफात है आसन, केवल पार केवल ब्रह्म पूरंत है बासन, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तै हरख न सोग ना जन्म ना मर्त, कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी बर्तन हर मेरी रास। राम कली महला पांजमा, महिमा न जान है वेद, ब्रह्मे नहीं जान है भेद, अवतार ना जान है अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी

सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरा आपे मेल एक परमे एक भगती लाए अपना किया आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बिल है सो बोल है जो पिक है आखी नहीं लेप तिस पुन्न पाप नानक का प्रभ

ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किछु न जान्यो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर न कोई भुलो चुको प्रभ तेरे रहाओ रद न बुद्ध न सिद्ध।

छूट हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊंचे ते ऊंच अपार सो मत सार जत हर सिमरी जे कर कृपा।

सगल निदान गुरसियो रहाओ। दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए, मानुख का कर रूप न जान मिलीन माने मान। गुर की हर टेक टिकाए अवर आशा सब लाहे, हर का नाम माग निधान तादर गह पाव है मान। गुर का बचन

आप गुरपे शब्द रचे मन पाए बिख्या सहज विचारी खाए भस्म चढ़ाए करे पाखंड माया मोह सहे जमदंड छूटे खापर भीख न पाए बंधन बाध्या आवे जाए बिंद न राखे जति कहावे माई मगर त्रैगलो भावे निर्दया नहीं ज्योत जाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जजाला पेख करे खिंता बो थटुआ झूठो खेल खिले बहु नटुआ अंतर अग्न चिंता बहु जारे बिन कर्मा कैसे उतर सफारे मुंद्रा फटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या बग्ञान जेहवा इंद्री साध लुभाना पशु पहे नहीं मिटे निशाना त्रिबद लोगा त्रिबद जोगा शब्द विचारे चूप सजोगा उजल सोच शब्दे होई जोगी युक्त विचारे सोई तुझ पे नौ ने तू करने योग थाप थापे करे सहोग जब तब संयम सच सुचीत नानक जोगी त्रिपवन मीत राम कली महला पहला खटमट दे ही मन बैरागी सुरत शब्द तुन अंतर जागी बाजे अनध मेरा मन नीना गुर बचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भक्त सुख पाइये गुरमुख हर हर मीठा लागे हर हर नाम समाइये रहाओ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेटे मेल मलाए नाम रतन अलमोल कहीरा तित राता मेरा मन तीरा होमे ममता रोग न लागे राम भक्त जम का पौ पागे जम दिनदार न लागे मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार पय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अंदर जाग रहे लिबलाई जीवन मुक्त गति अंतर पाई अलिप्त गुफा में रहे निरारे तस्कर पंच शब्द संगारे पर कर जाए नमन ढोलाए सहज निरंतर रहो समाए गुरमुख जाग रहे अधूता सदबैरागी तत्पुरोता जगसूता मरे आवे जाए बिन गुर शब्द न सो जी पाए अनुद शब बजे दिन राती अवगत की गत गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछाणी एको रब रहा निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता तज हों लोबा एको जाता गुर

जल पीवत ज्यो तिखा मटांत तन बिकसे ग्रह आवत कांत लोभी खा तन प्राण उधार त्यो हर जन हर हर नाम प्यार किरसाणी ज्यो राखे रखवाला मात पिता दया ज्यो।

प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक बंता राता राम प्यारे हर प्रेम भक्त बन आई संतो सतगुर खे पनवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली तिष्णु अलाही संतो रहो खोजत खोजत लाल इक पाया हर कीमत कहन न जाई संतो चरण कमल से लागो त्याना साचे दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पय निहाला हर सिम तिप्त अहाई संतो आत्म रामर व्या संत्यंत सकत आवे कत जाई संतो आद जुगादी है भी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है तू रहा सब ठाई संतो बीत साजन माल जो बन सुत हर्ष नानक बाप मेरी माई संतो राम करी महला पंजमा मन वच कर्म राम नाम चितारी घूमन केर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहो अंतर सूखा बाहर सूखा हर जब मलन पई दुष्टारी जिसते लागे तिने नवारे प्रभ जियो अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरणी पंच बिनसे महा अहंकारी साधु संगते फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति ज्योत तुम्हारी तू समरथ अगत गोचर रव्या एक मरारी कीमत कौन करे तेरी।

मन मन बसाए, नाम जन के मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सचे साहेब क्या नहीं कर देरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुरबान कीता गुर विटो, जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो सर्व धरो पे आरो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द कित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द बाजे, कला जित कर धारिया, पंच दुत दवस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तो जिन कैसे नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद बाजे। साची लिवे विण देह नवाणी, देह नवाणी लिवे बाजो क्या करे वेचारिया, तुद वार समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, एस नौ होर थौ नाही शब्द लाग सिवारिया, कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल बिकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सचे सवारिया, कहे नानक ए आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावे ते सोजन दे जिस नू होर क्या करे वेचारिया, एक भरम पूले फिरे दह दिस एक नाम लग सवारिया, गुर प्रसादी मन पिया निर्मल जिन भाणा।

शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो, अवर न जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे। प्रसाद नानक गुर अंग गुरु अंगद परम पदी पावे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुरो भक्त ते हर पाया। हर भाणा गुरु पाया गुर जावे हर पग पात जियो, सतगुर करे हर पह बेनती मेरी प्याज रखो अरदास जियो। प्याज रखो हर जन केरी हर देहो नाम निरंजन, अंत चल दया हुए बेली जम दूत काल निखंजन। सतगुर की बेनती पाई हर पै सुनी अरदास जियो, तार हर हर तार के पास सतगुर मिलाया धन धन कहे सहवास जियो। मेरे सिख सुनो

भक्त सदगुरु पुरख सोई जिस हर पर पाना पावे आनंद अनहद वजे बाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुस भाई परिवार मेरा मन बिखो कर निर्जास जियो तुर लिखा परवाना फिरे नाही गुरजाए हर पव पास जियो सतगुरु पाने अपने वह परिवार सदाया मस मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजे मित दिख किस मित की पैज पावे तुझी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रथाक होए सतगुरु प्रथाक होए बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया आंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़ी हर नाम सुनिया बेवान हर रंग गुर पावे पिंड पतल किरिया।

सोडी सेलक या गुरसाध सचनी सान जियो सतगुर पुरख बोलिया गुर सिखा मन ले जाए जियो मोरी पुत सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी किसे गुरु आप रखिया कोई कर बकीली नवे नाही फिर सतगुरु आन नवाया हर गुरे पाना नी वड़ियाई तुर लिखिया ले कर जाए जियो कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पांचवा चांस एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा ज्ञानी अड़ा हर ज्ञानी अड़ा नैन अलोएड़ा हर ज्ञानी अड़ा नैन अलोया काट कर सोया पात अमृत प्रया गूड़ा नाल हो बंदा लह न सकंदा सौ न जाने मूड़ा माया मद माता होशी बाता मिलन न जाई परम तड़ा को नानक करो नाही सूजे हर साजन सब के निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण अधारा मेरे गोविंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दतारा मेरे कृपाला दान दतारा अप्रिय पारा काड़ काड़ अंतर सोहनिया एक दास दासी सारी सब सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनु राखे सो सज भाख है पुरखा सद विचारा कहो नानक जो प्रभु को पाना इसी को प्रभु प्यारा मानो प्रभु मानो मेरे प्रभु का मानो जानो प्रभु जानो स्वामी सुगुर सुजानो सुगुर सुजाना सतप्रधाना अमृत हर का नामा चाक अकाने सार्ग पाने जिनके पाग मथाना तिन ही पाया तिन्हें ते आया सगल तिथि का मानो कौ नानक सिर सख्त निवासी सच तिथि दीवानो मंगला हर मंगला मेरे प्रभु मंगला हर मंगला मेरे प्रभु कह सुनिए मंगला सोहरड़ा प्रभु सोहरड़ा आनंद सुनिए सोहरड़ा आनंद बाजे सावधे अगाजे नित नित जिसे बुधाई सो पप ध्याई सब कुछ पाई है मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण यासा गुरमुख मिल निर्गुण को नान कर मिल कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याई मना किरना बिसारी है राम रामा राम रमा कंठ उड़तारी है उड़तार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख पप खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद बिचारी है बिलबंत नानक मिल संग साधु दिन सवरण चितारी है चरण कमल आधार जन काया सुरा माल मिलख भंडार नाम अनंत सरा नाम नरहर निदान जिनकै रज भोग एक नारायण रस रूप रंग अनंत बीठल साध साथ ते आयना किलविक हरना नाम मर पुने चरणा नाम जन की सरास हरा इन बंत नाक रास जन की चरण कमल आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जाने देख चल दयाल सुन भक्त बखा नहीं ये जन सब तुझ से आवे है पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जग तीसरा साधु संत जान सोई किसे प्रभु जी मानई मत नान करो कृपा सोई तुझे पछा नहीं मोह निर्गुण अनाथ सरनी आया बाल बाल बाल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुरनाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया
जल ने बुझाई सात आई मिले चिरी बचुनिया आनंद हर्क सहज साची महामंगल गुण गाया। बिन बात नानक नाम प्रभु का गुर पूरे से पाया। रामपुरी महला पांचवा रुण चुनो शब्द अनाहद अनिसुट का ये संतन कै किलविक सब दुख बिनासन हर नाम जपिए गुरमंथन कै हर नाम लीजय अम्यो पी जय रैन दिस अराधिय योगदान हरेक क्रिया लाग चरण कमल ऐसा दिया। पाओ भगत दयाल मोहना दुख सगले पर हरे बिन बंस नानक दरे सागर त्याए स्वामी नर हरे। सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गाव है गुण तेरे राम आनंद मंगल गुर चरणी लागी पाए सुख कनेरे राम। सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभु राखिया हर चरण चरण लागा प्रम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया। हर एक जितवे प्रभु एक गावे हर एक दृष्टि आया बस नानक भव करी कृपा पूरा सदगुरु पाया। मिल रही प्रभु साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो आसना पाइये गुनिये राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारण मोह सोग विकार बिखड़े जप नाम उदाहरण सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब ऋण सीवा। इन मत नान प्रभु माया की जय नाम तेरा जब जीवा राख लिए प्रभु भक्त जना अपनी चरणी लाए राम आठ पैर अपना प्रभु सिमर है एको नाम से आए राम त्याए सो प्रभु तरे पव जल रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभु लगा मीठा पाना सब इच्छुनी आज पूरी मिले सतगुरु पूरिया। इन बात नान प्रभु आप मिले फिर ना ही दुख बेसोरिया। राम कली महला पंजमा शांत सलोक चरण कम शरणागति आनंद मंगल गुण गाम नान प्रभु आराधिया विपत निवारण राम शांत प्रभु विपत निवारण पृथ्वी अवर न कोई जियो सदा सदा हर सिमरी है जल चल महियल सोए जियो जल चल महियल पूर रहया एक निमक मनो ना विसरै फिर चरण लागे दिन सुभागी सर्व गुण जगदीश कर सेवक सेवक दिन सरैणी तिस भाव है सो होई जियो बल जाए नानक सुख है दाते प्रगास मन धन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुखी मिसी दुसिया सोच नानक टेग गोपाल की गोविंद संकट मोच शांत तय संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभु दीना नाथ प्रातपाल जियो प्रातपाल अजोत पुरख एको तिसे सो रंग लागा कर चरण वासक मेल नीने सदा अन दिन जागा यू पिंड गिरो स्थान तिसका तन जोबन तन माल जियो सद सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रातपाल जियो। श्लोक रसना उचरे हर हरे गुण गोविंद बख्यान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान शांत सो स्वामी प्रभ सब रख को सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ताक लाग जियो पाशाह संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दी जय आज एक तरनी तरह साध संगे हर नाम रंगे सार सागर सब तरह जन्म मन बेकार छूटे फिर न लागे दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सुहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम मोख
मुख पदार्थ नाथ सगलपन मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात शांत सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो आनंद पाया बड़ भागी हो गृह प्रकृति प्रभ आए जियो गृह लाल आए पूर्व कमाए ताकि उपमा क्या गणा।

अजन राम रवि हितकार रण में जूझे मनुआ मार रात दिनांत रहे रंग राता तीन पवन चारे जाता जन जाता सोच सी जेहा अत निर्मायल सी जित देहा रैसी राम हृदय एक पाए अंतर सब साथ ले बलाए रोशना की जय अमृत पी जय रहन नहीं संसारे राजे राय राय रख नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन से रहे न कोई कृपया करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरजे वे पदमती लाज मनाती मर गई कुगट कोर चली सास जबानी बावरी सिरते संग टली प्रेम बुलाई गरी सो मन में शब्द आनंद लाल सी लाली पई गुरमुख पई निचेंद लाहा नाम रतन जब सार लव लोभ बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लायत बार मन मुख अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जागो हुए मजूर गया ठगाए ठागो लाह ना पूंजी वे साहो नाग सच्ची पर सच्चा पासाओ आय दूसरा जग जम पांत आई न मेटन को समरत आद सहल नीच कर हुए आस लेख निवे जिस दोए आस ऐसा मुग्ध सियाना पग बिछोना जग बोराना सब में बरते एक कोश होए जिसनु कृपा करे तिस प्रकट होए जोग जुग साप हो जोग जुग साप हो सदा निर्भैर जन्म मरण संदा तैर तो जिसे सु आपे आप पाए आपे काट साप आप गोचर संदे लोई जोग जुग जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई ना भ्यूना मुक्त किब होई नामे विरोध शरीर क्यों ना मिले का।

जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत दिया केते गुरचेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त न हुआ केती नार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दस ढूंढ करे मह पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तोलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर स्मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मजन चज अचार।

चिंतत ही दिस सब कोय चित है एक तही सुख होए चित वसै राचे हर नाए मुक्त पया पत स्यो कर जाए छीजै देहे खुले इक गंठ छिया नित देखो जग हंड धूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुकत कर आने छाया छूजी जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजै जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजै पई सबाल।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेल है ता तुझे समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिए बीस अकीस। चख बोलन क्या जग से वाद, चुख चोर मरे देखे परमाद। जन्म हुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस निराशा। चोर चोर चख माटी रल।

श्री पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाकुर मनुहा राखो ठाए ठहक मोई अवगण पछताए ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कुड़ियार पार कर जाती ठाक रहाई महल बुलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागण ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिगार डहपण तन सुख नहीं बिन डर बिनती डार डरप मुई कर अपने दिथी कंत सुजान डर रख्या गुर अपने निरपो नाम वखाण डुगर वास तिखाकणी जब देख

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहारे जाओ जो उसारे सोटासी तिस बिन अवर न कोए गुर प्रसादी तिस समला ता तन दुख न होए ना को मेरा किस गही ना को होआ न होग आवण जान विगुचिए दुविधा व्यापै रोग नाम विहुणे आदमी कलर कंत गिरंत विण नामे क्यों छुटिए जायर सातल अंत गणकत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुरबिन ज्ञान न होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग विछड़या मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुग है मिल एक से तिन को फास न रंग उढ़े ते बेगुल बेगुले ताके चोग कणी पंख टूटे फाही कड़ी अवगुण पीड़ बनी बिन साचे क्यों छुटिए हर गुण करम मणि आप छड़ाए छुटिए वड्डा आप तणी

रही जन्म मरण दुख निवार। नाना करत न छूटिया विण गुण जम पुर जाहे, ना तिस एहो ना ओह है अवगुण फिर पछताहे। ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान, विण नामे निर्भउ कहा क्या जाना अभिमान। थाक रही केव अपड़ा हाथ नहीं ना पार, ना साजन से रंगले।

अपार। पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा, पर हर पाप पछाणे आप, ना तिस सोग विजोग संताप। नरक पड़न तो

फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फाता चोग चुगे नहीं बुझे, सतगुर मिले ता आखी सुझे। ज्यो मछली फाती जम जाल, विण गुर दाते मुक्त न पाल। फिर आवे फिर जाए, एक रंग रचे रहे लिव लाए। इव छूटे फिर फास न पाए, बीरा बीरा कर रही बीर पय बैराए। बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए। बाबुल कह कर बेटड़ी।

महापुरख की निज कर वासा होए। पन पन घड़िए घड़ घड़ भजे ढाहे उसारे उसरे ढाहे सर पर सोखे बी पर पोखे समरथ वे परवाह परम भुलाने पए दीवाने विण भागा क्या पाइये गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइये हार गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ ना पछताइये पब्बे पल है गुरमुख बूझे ता निज कर वासा पाइये पब्बे पौजल मार्ग बिखड़ा आस निरासा तरिये गुर प्रसादी आपो चीने जीव त्या इव मरिये माया माया कर कर मुए माया किसे ना साथ हंस चले उठ डुमणो माया भूली आथ मन झूठा जम जोहया अवगण चलह नाल मन महमल मन उल्टो मह मन में मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल मेरी मेरी करमुए विण नामे दुख पाल गढ़ मंदर महला कह ज्यो बाजी दी बाण नानक सच्चे नाम विण झूठा आवण जान आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान जो आवे से जाहे पुन आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी कटे न वधे उताहे से जन उबरे जिन हर पाया तंदा मुआ विगुति माया जो दिसे सो चलसी किस को मीत करे ओ जियो संपो अपना तन मन आगे दे ओ अस्थिर करता तू तणी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुरी हाओ मुई शब्द रति मन चोट गुण की मारी हौ मुई शब्द रति मन चोट राणा राव ना को रह रंग न तुंग फकीर वारी अपो अपनी कोई न बंध तीर राहो बुरा पी हावला सर डूगर असगाहा मैतन अवगण चुरमुई विण गुण क्यों कर जाहा गुणिया गुण ले प्रभु गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों

सतगुर गुण न जापनी जिचर शब्द न करे बीचार। लस्करिया कर समले आए वजो लिखाए कार कमावे सिर तनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़ है मनोविसार। गढ़ दो ही पात साह की कदे न आवे हार चाकर कहिए खसम का सोहे उत्तर दे वजो गवाए अपना तख्त न बैसे से। प्रीतम हथ वडे आईया जय पावे तै दे आप करे किस आखिए अवर न कोई करे। बीजे सूजे को नहीं बह तुलीचा पाए नरक निवारण नर है नर साचो साचे नाए। वेण त्रेण ढूंढत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहुमान की सतगुर हाथ पंडार।

जैसे कलम है कमल निरालम मुरगाई नैसाणे सुरत शब्द पव सागर तरिय नानक नाम वखाणे रह एकांत एको मनवस्या आसा माहे निरासो अगम गोचर देख दिखाए नानक ताका दासो सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बीचारो रोस न कीजै उत्तर दीजै क्यों पाइय गुरुद्वारो एहो मन चलतो सच कर बैसे नानक नाम अधारो आपे मेल मिलाए करता लागे साच प्यारो हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उद्याने कंद मूल आहारो खाइए उदो बोले ज्ञाने तीरथ नाइय सुख फल पाइय मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई

को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वासलिया अकल पत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारियले कटकड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कारण करनी सेवै सिख सो खोज लह हुकम विस्मा।

सतगुरु परचै परम पद पाइए सच शब्द समाल लिया एक को सच एका जाना होमे दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल पर गास थिया जीवत मरे ता सब कुछ सूझे अंतर जाने सर्व दया नानक ताको मिले वड्डाई आप पछाने सर्व जिया साचो उपजै

नानक तारे तारण हारा हमें दूजा पर हरिया मनमुख भूले जन्म जम की काण पार कर जो है हाणे हाण मनमुख परम।

गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाइए अलख अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार। गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख निभय सर परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाइए शब्द अचार। शब्द भेद जाने जानाई, नानक हमें जाल समाई, गुरमुख धरती साचे साजी, तिसमह उक्त खपत सोबाजी। गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यो कर जाए, साच शब्द बिन पित नहीं पावे, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे। गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पवजल तरिय सच सुधि, गुरमुख सर अपसर विद जाने।

गुरमुख पौ पंजन प्रदान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र सिमरत बेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध कवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पचाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ आत डुलाए बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए बिन गुर बसियर डसे मर वाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगण मेटे गुण निस्तारे मुक्त महासुख गुर शब्द बीचार गुरमुख कदे न आवे हार तन हटड़ी एहो मन वणजारा नानक सहजे सच वापारा गुरमुख बांध्यो सेत बिधातै लंका लूटी तैत संतापै रामचंद मार्यो एह रावण बेद पपीखण गुरमुख परचायण गुरमुख सायर पाहण तारे गुरमुख कोट तेती सुधारे गुरमुख चूके आवण जान गुरमुख दरगह पावे मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख दरगह सिफत समाए नानक गुरमुख बंद न पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख होमे शब्द जलाए गुरमुख साचे कै गुण गाए गुरमुख साचे रहे समाए गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु।

कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमत पत रहे, कवन जोध जो काल संघार, बोले बाणी नानक बीचार। शब्द पाखत सस जोत पारा, सस कर सूर वसै मिटया अंधा अंधियारा, सस कर सूर वसै मिटे अंधियारा, सुख दुख सम कर नाम आधारा, आपे पार उतारण हारा। गुर परचय मन

नाव सरसुपर दसवें पूरे तह अनहत सुनव जावह तूरे साचे राचे देख जूरे घट घट साच रहया पर पूरे गुरमत गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लय सच सोए सहज पाए मिले सुख होवे गुरमुख जागे नींद न सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीख्या से सचराते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते कुबद चवावे सोकित ठाए क्यों तत न बुझे चोटा खाए जम दर बादे कोई न राखे बिन शब्द नाही पत साखे क्यों कर बुझे पावे पार नानक मनमुख न बुझे गवार कुबद मिटे गुर शब्द विचार सतगुर भेटे मोख द्वार तत न चीने मन मुख जल जाए गुरमत विछड़ विछड़ चोटा खाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरग है पावे मान साच वखर तन पल्ले होए आप तरे तारे भी सोए सहज रता बुझे पत होए ताकी कीमत करे ना कोए जह देखा तह रहया समाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहा वास कथियले जित तरिये पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द क्यों निरंतर वास अलखंग जह देखा तह सोई पवन कवासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचो परम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाए शब्द गुरु पव सागर तरिय इत उत एको जाने चहन वर नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारो गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारो त्रै गुण मेटे शब्द वसाए ता मन चुके अहंकारो अंतर बाहर एको जाने ता हर नाम लगे प्यारो सुख मना इड़ा पिंगला बुझे जा आपे अलख लखाए नानक तेहोते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाए मन का जियो पवन कथ्यलिए पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुंद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हमें प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रहिए कित भोजन तृप्ता स नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल न ग्रासै रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अराध्या अकथ कथा ले समकर रहे तव नानक आत्म राम कौ लहे गुर प्रसादी रंगे राता अमृत पिया साचे माता गुर विचारी अगन निवारी अप्यो पियो आत्म सुख तारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बुझे को विचारी एह मन मैगल कहाँ बसे लिए कहाँ बसे एहो पवना कहाँ बसे सो शब्द औदू ताको चुके मन का पवना नदक रेता सतगुर मेले ता निज कर वासा एह मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल निज कर वासा एह मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों